0: सदर जो है ना वो पीएम।
1: और खास और फिर दूसरी तरफ देखिए कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी के जो बुनियादी रुकन है जो इसको वोट देने वाले हैं
0: जी,
1: वो खुद अपनी पार्टी के चेयरमैन बेटे फ्रेडरिक्सन जो कि बदकिस्मती से वजीर आजम भी हैं, उनके मुसद्दे क्या राय रखते हैं। सवाल ये है कि हमारे अपने लोग जो मौजूदा हालिया इंतखाबात में सोशल डेमोक्रेट पार्टी के प्लेटफॉर्म से हिस्सा ले लिया जिन्होंने, और जो सोशल डेमोक्रेट पार्टी के साथ समाज का इजहार करते हैं और इसकी मदद करते हैं, वो कहाँ हैं इस वक्त? वो क्यों नहीं अखबार में अपने ख्याल का इजहार करते हैं, एडिटर के नाम खत लिखे, या सोशल डेमोक्रेट पार्टी के मुख्तलिफ जो ग्रुप बने हुए हैं पार्लियामेंट में उनको लिखे
0: जी। अच्छा, आज हमने एक सुजाना मुंग से बात की और वो हमारा इनवान जो था वो बच्चों का और उनके वालदैन का के साथ जो सलूक होता है या उनके बच्चों को घरों से ले लिया जाता है और अडॉप्टेड जो बच्चे हैं, अब ये पता चला है कि चिली से 3 बच्चे जो अडॉप्ट किए गए थे डेनमार्क में, उनके साथ क्या हुआ, अब उन्होंने डेनिश स्टेट के ऊपर मुकदमा कर दिया और उन्होंने कहा कि तुमने हमारे जो है ना राइट टू फैमिली को वायलेट किया है और जो है तुम इसका जवाब दो। तो ये जो हमने आज डिस्कशन की है और ये जो अडॉप्शन के मसले हैं, ये ग्रीनलैंड हो या दूसरे ममालिक हो, जो भी गैर यूरोपियन बच्चे हैं उनके साथ जो प्रॉब्लम हो रहे हैं, अब ये मसला बहुत बढ़ गया है। अब चिली के 3 बच्चे जो यहाँ पे अडॉप्ट किए, तो उन्होंने डेनिश स्टेट पे भी मुकदमा कर दिया।
1: बिल्कुल आपने बजा कहा और ये एक बड़ा जुर्मनाना इकदाम है। मैं फिर आऊंगा आपने सामने की तरफ जो रेडियो हमवतन से मुंसलिक हैं, सुन रहे हैं कि घबराएं नहीं। अगर आप समझते हैं कि आपके खिलाफ जो चीज की जा रही है वो उसकी कोई वजह ही नहीं है, तो आप बाकायदा अदालत में जाएं।
0: हाँ, और डरे नहीं, बिल्कुल
1: डरे नहीं, और इस बात को मत समझे कि खुदा नखास्ता आपको मुल्क से निकाल दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, आपकी बदनामी होगी। बदनामी नहीं होगी
0: जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल।
1: आप अपने हक के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये चीज जो है ये हमेशा में लेनी चाहिए कि डैनिश हुकूमत को या डैनिश मुतल्लिका अहदेदारान को इस तरह का दुरुस्त देना, ये कोई बदनामी नहीं है और इसमें किसी किस्म की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये आपका हक है। और हक यहाँ डेनमार्क के माशरे में अब जैसी सूरत हाल है ये मिलता नहीं है, ये छीना जाता है।
0: ये लफ्ज़ जो आपने इस्तेमाल किया है, अगर मैं इसी को थोड़ा सा और सपोर्ट करूँ तो इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स ने एक हॉटलाइन जो है वो बनाई है काफ़ी अरसे से, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अपने लोगों को, क्योंकि मैं ख़ुद इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट के बोर्ड में हूँ, तो हमारे लोग शिकायत नहीं करते, वो डरते हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट आपके साथ खड़ा हुआ है और उस हॉटलाइन जो है वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो ये महसूस करते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है, खा वो काम की मंडी में हो, खा आप जहाँ रहते हैं वहाँ के आपके नेबर ने, या कहीं और भी आपके साथ जाती हुई है, तो आप उसको टेलीफोन कर सकते हैं और उसका नंबर जो है मैं आपको बता देता हूँ, 32 69 86 66 32 69 86 66। और आप इस पे दिन के 12 बजे से लेके 3 बजे तक, मंडे से लेके थर्सडे तक जो है आप रोज़ाना इस पे टेलीफोन करके अपनी शिकायत कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट का जो अमला है वो उस शिकायत को बड़े सीरियसली लेंगे और वो आपकी मदद भी करेंगे। और अगर आप ये समझते हैं कि ये केस को आगे बढ़ा जाए तो इंस्टीट्यूट जो है आपको लीगल मदद भी देगी। अब ये जो है मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और हमारे लोगों को ये चाहिए कि खुदारा खुदारा जब आप ये समझें कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई है किसी किस्म की, प्लीज़ आप उसकी शिकायत करें। और अभी तो मैं जैसे मैंने बताया इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट जो है उनकी ये हॉटलाइन है और उसको भी प्लीज़ आप इस्तेमाल करें।
1: बहुत अच्छा किया आपने ये निशानदेही की और हमारे सुनने वाले जो हैं वो यकीनन इससे इस्तेफादा करेंगे और करना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल।
1: दूसरी बात, मैं आपके तवस्सुत से और रेडियो हम वतन के तवस्सुत से एक मरतबा फिर पाकिस्तान सोसाइटी के जनाब विराज खान चौधरी साहब को ये मतवज्जो करना चाहता हूँ, उनको अर्ज करना चाहता हूँ कि जनाब आपकी तरफ पाकिस्तान सोसाइटी जो है वो पिछले 40-45 साल से आप उस पर बैठे हुए हैं, वक्त आ गया है कि आप हमारी आवाज़ बने और हमारे डैनिश माशरे में जो मसाइल हैं उनकी निशानदेही करने के लिए वही जज्बा, जोर और वही ताकत इस्तेमाल करें जो पहले की जाती थी। और इसके लिए आप हमारी बरादरी ही से ताल्लुक रखने वाले लोग जो हैं, खासतौर पर जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है, भले वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनको बुलाएं और उनका इजलास करें और उनकी राय सुनें कि वो इस वक्त सोशल डेमोक्रेट पार्टी की मकलूत हुकूमत की तरफ से कारकिन वतन और हम मुसलमानों के मुतल्लिक जो जहर उगला जा रहा है उसके तदारक के लिए क्या कर रहे हैं।
0: ये बहुत खूबसूरत तजवीज़ है और मैं कोशिश करूँगा कि राज खान साहब से जो है कांटेक्ट करूं और उनसे मुलाकात करके उन तक आपकी जो ये ख्वाहिश है इसका इजहार करूं। अच्छा, अब अगर हम बच्चों की के हकूक की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो एक और मसला जो है अभी सोसाइटी में काफ़ी उस पर बहस हो रही है वो ये है कि बहुत से वालदैन, और सिर्फ ये गैर मुल्की वालदैन ही नहीं बल्कि डेनिश वालदैन, सब वालदैन जो है वो इस चीज़ से बड़े नाला हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो इंटरनेट पे और डिजिटल गेम जो है बहुत खेलते हैं और घंटों घंटे जो है वो इसको इस पे ज़ाया करते हैं। और ये एक रिसर्च भी जो आई है उसमें ये बताया गया है और हुकूमत चाहती है कि इसको किसी तरीके से जो है रोका जाए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि खास 70% वालदैन जो हैं उनको ये फिक्र है। लेकिन डेनमार्क जो है उसमें इस किस्म के कवानीन बनाने से हचकचाहट है जिसमें लोगों को कहा जाए ये तुम नहीं करो ये नहीं करो और ये कानून है, लेकिन कानून के बगैर तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
1: आपने बिल्कुल बिना कहा, देखिए ये जदीद टेक्नोलॉजी के जमन में आईफोन और इंटरनेट को इस्तेमाल करने के मुताबिक कई एक ममालिक ने, जिनमें बरतानिया भी शरे फहरिस्त है, आपने यहाँ पाबंदियाँ लगा दी हैं कि 18 साल से कम उम्र के नौजवान जो हैं वो इनको किस तरह इस्तेमाल करें और क्यों इस्तेमाल करें और इससे किस तरह बचा जाए। और ये चीज़ जो है ये डेनमार्क में भी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। बच्चे जो हैं खासतौर पर वो बहुत ज़्यादा वक्त ऐसी बातों पर सर्व करते हैं अपने आईफोन पर, मिसाल के तौर पर जिनका कोई तलब नहीं होता डेली लाइफ से, और अपनी वो तमाम तर तवज्जो जो है वो उधर मबजूल कर देते हैं और इस तरह वो कुदरती सोच जो उनके जहन में पैदा होती है
0: जी,
1: और जिसके लिए वो अपनी सोच की बुनियाद पर इकदाम लेना जरूरी समझते हैं वो खत्म हो जाती है। वो आईफोन के और इंटरनेट के मोहताज बनकर रह जाते हैं। और इस बात को रोकने के लिए आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि डेनमार्क में फिर वक्त उस तरह के इकदाम नहीं लिए जा रहे जिस तरह के डेनमार्क के पड़ोसी ममालिक में और यूरोपीय यूनियन में लिए जा रहे हैं। हाँ, सियासतदान बात जरूर करते हैं, खर्चा जरूर करते हैं, लेकिन इन कानून का इंतजार किए बगैर असल बात जो है वो घर से शुरू होती है। वालदैन को ये देखना चाहिए कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची कितना वक्त इन चीज़ों पर सर्व करते हैं और क्यों करते हैं, वो कौन सी कमी है जो उनका ये आईफोन पूरा कर रहा है और घर में उस पर बात करने की इजाज़त भी नहीं होती।
0: अच्छा, डेनिश मीडिया काउंसिल है डेनमार्क में, उन्होंने जो है एक गाइडलाइंस दी हैं पेरेंट्स के लिए, उसमें 5 जो एडवाइस दिए हैं। तो अगर कोई शख्स ये चाहता है तो वो डेनिश मीडिया काउंसिल की वेबसाइट पे जाएं और उसमें चिल्ड्रन एंड यंग पीपल का जो सेक्शन है उसमें जाके वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। अगले हफ्ते हम जो है वो उन तजावीज़ का भी जिक्र करेंगे, लेकिन क्योंकि हम नौजवानों की लिए बात कर रहे हैं तो एक और ख़बर जो आई है वो थोड़ी सी अजीब भी है, लेकिन ऐसा तो होना था जब फैमिली टूट जाती हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि 16 से 25 साल की उम्र जो है उसकी तादाद जो है नौजवानों की वो 2036 में बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि लोग बच्चे ज़्यादा नहीं पैदा करते और आज से 10 साल आने वाले 10 साल में अब तो 2026 है तो तकरीबन 66,000 कम यंग लोग होंगे डेनमार्क में। सवाल ये पैदा होता है कि जब आप बच्चे पैदा नहीं करते और आप के नौजवान जो हैं उनके तादाद कम हो जाएगी तो इस मुआशरे में आगे बढ़ाने के लिए फिर गैर मुल्की ही आपको लेने पड़ेंगे और फिर उनको उनके साथ अगर उनके साथ आपको दूसरे ममालिक से लेबर भी लेनी पड़ेगी। तो ये मसाइल जो है, एक तरफ तो ये मसला है कि लोग ज़्यादा बच्चे उनके नहीं होते तो उससे वो तादाद कम हो जाती है, फिर लोग ज़्यादा बूढ़े हो रहे हैं तो उनकी जो पेंशन वगैरह और उनकी महकमा सेहत के लिए लोग नहीं मिलते, तो ये मसाइल जो है ये फिर डबल मसाइल हो जाते हैं।
1: आपने बिल्कुल बढ़िया कहा, डेनमार्क का ये एक वतीरा रहा है, आज से नहीं बल्कि कम बेश एक सदी पहले से।
0: जी जी,
1: ये अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए घर के दरवाजे तो खोल देते हैं, लेकिन जब उस दरवाजे से घर मुल्क के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो ये फिर दरवाजा बंद करके उसके साथ जो करते हैं वो उसकी मिसालें यहाँ डेनमार्क में बहुत पहले से मौजूद है।
0: वेरी ट्रू।
1: आपको याद है पोलैंड से लोगों को जब बुलाया गया जिन जमाने में कि वो यहाँ पर आकर खेती बाड़ी में हाथ बढ़ाए तो उन्हें पुलाका पुलाका कहकर उनकी तस्दीक की
0: गई।
1: इसी तरह जर्मन लोगों को जब जहाँ बुलाया गया कि वो आलू की काश्त में हाथ बढ़ाए तो उनको कठा प्रतुष्का का नाम दिया गया।
0: एग्जैक्टली।
1: और फिर हॉलैंड के लोगों को जिनकी याद में आपके आमा में एक चर्च भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं,
0: और पूरी का पूरी कॉलोनी है वहाँ पे थॉर्नबी में। जी जी,
1: बिल्कुल बजा कहा आपने। जब उन हॉलैंड के लोगों को बुलाया गया तो उन्हें ट्रस्को ड्राइंग कहा गया, क्योंकि वो लकड़ी के बने हुए अपने मखसूस जूते पहनते।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। और हमारे मुताबिक भी आप देखते हैं कि किस तरह के नामों से हमें पुकारा जाता है। तो ये सारी बदनीति पर मुश्तमिल ये जो रवैया है ये डेनमार्क के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि सन 2036 के नौजवानों की तादाद बहुत कम हो जाएगी बल्कि वो रहेंगे नहीं। तो इस नस्ल को आगे चलाने के लिए या तो आप जैसा कि आपने कहा कम बच्चे पैदा ना करें, ज्यादा बच्चे पैदा करें, लेकिन ये बच्चे जो है अब ऑटोमेटिक मशीनों में तो पैदा नहीं होते और इस कमी को, इस अफराजी कमी को पूरा करने के लिए आपको जब गैर ममालिक से सहारा लेना पड़ता है तो उन बुलाए गए मेहमानों को कम अज कम वो तज़ीम और वो इज्जत दें जिसके वो हकदार हैं।
0: ये मसला जो अभी आपने उठाया है नसर भाई, ये एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। मुझे याद है जब हम लोग यहाँ पे आए थे 70 की दहाई में तो हमें कहा करते थे फ्रामा आबायता, फिर उसको कहना शुरू किया गेस्ट आबायता, और उसके बाद कहना शुरू किया इनवान दफलुतनीगा। फिर जब हमने अपने सियासी कोशिशों से उसको एथनिक मिनोरिटीज़ कहलवाया, उसके बाद अब वो मैंने एक आर्टिकल लिखा है, छोटी सी किताब, उसका नाम उनवान है फ्रामा अबायती मुस्लिमा। तो अब वो लफ्ज़ मुस्लिमा जो है वो एक सबके लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गया इन लोगों ने ना। तो ये वाकई बात आपकी दुरुस्त है कि अगर किसी को बुलाते हो तो उसकी इज्जत करो, उसकी अप्रिशिएशन करो। और ये एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ और अभी भी आपके साथ शेयर करूँगा, और मैंने कई दफ़ा डेनिश सियासतदानों को भी कहा है कि खुदारा तुम तनकीद ज़रूर करो लेकिन इंडिविजुअल पे तनकीद करो, ग्रुप तनकीद नहीं करो कि कोई ग्रुप में दो शख्स एक ऐसी बातें नहीं करते जैसे आप कह रहे हैं।
1: दूसरे एक फर्द के इंसादी फेल को आप ये न बताएं, ये इस पूरी बरादरी का ये रवैया है।
0: एग्जैक्टली
1: ऐसा नहीं है, क्योंकि कई दैनिश जो है अगर हम तरफ देखें तो अगर कोई एक दैनिश इस तरह का कोई काम करता है जो कानून की नजर में जुर्म है तो क्या हम ये कह देंगे कि ये सारे दैनिश इसी तरह है? बिल्कुल नहीं।
0: वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और उसके अलावा देखिए एक चीज जो मुझे बड़ा दुख होता है जिसका मैंने इजहार किया, आप भी इजहार करते रहते हैं, कि अगर तनकीद ज़रूर करो लेकिन साथ साथ जो है तुम तारीफ़ भी करो उन चीज़ों की जो गैर मुल्कियों ने इस मुल्क में कंट्रीब्यूशन की है उसकी।
1: बिल्कुल आपने भेजा कहा, इसके लिए आप देखिए डैनिश इंडस्ट्री जो है, डैनिश इंडस्ट्री की जो कौमी तंजीम है DI,
0: जी जी,
1: उसकी आप रिपोर्टें देखें और मैथमेटिक्स की रिपोर्टें देखें, कितना टैक्स के मद में गैर मुल्कियों ने सरमाया मुहैया किया,
0: अरबों अरबों करोड़ों जी,
1: अरबों डॉलर करोड़ों जो है मुहैया करते हैं। और जब ये आपके लिए इस तरह की आमदन का जरिया है, ये आमदन आपने वो मेहनत और मशक्कत से पैदा करते हैं, तो फिर आपको इतराज क्या है? और जब वो मेहनत और मशक्कत करते हैं तो वो आप ही की इंडस्ट्रीज को, आप ही के रोजगारी अदारों को तकवीत पहुंचाते हैं।
0: अच्छा, एक और ख़बर है जिस पे मैं आपके राय लूँगा, वो ये है, ये सियासतदान जो है ना, मैं क्या कहूँ इनको, वो अब कुछ सियासतदान ख़ासतौर पे लोकल सियासतदान जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो बच्चे जो गरीब फैमिली से होते हैं और जो अपनी तालीम में अच्छे नहीं हैं, उसकी वजह से हमारे स्कूल जो हैं उनकी जो हालात हैं वो ख़राब हो रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हुकूमत एक ऐसे कानून बनाए कि हम ऐसे बच्चों को जो है, जो कि तालीम को ख़राब करते हैं दूसरों के लिए, उनको स्कूल से ही निकाल दें, अंदाज़ा लगाएं, बजाय इसके कि उनकी हेल्प करें, अब उनको स्कूल से निकालने के लिए कह रहे हैं। और वो अब बात तो उन्होंने वैसे नॉर्मल की है, लेकिन ये बच्चे जो हैं जिनकी ये बात कर रहे हैं, वो बच्चे टर्किश, पाकिस्तानी, अरबिक, ये उनकी तरफ इशारा है, क्योंकि ये और उस कमून में जो है ये कहा गया है।
1: मैं इसी तरफ आने वाला था कि ये तजवीज़ जो है ये बज़ाहिर तो हर एक का अहाता करती है, लेकिन इसका निशाना जो है वो असल हदफ जो है
0: जी,
1: वो तातीन वतन बच्चे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और तातीन वतन बच्चों के साथ अगर ये सलूक रखा जाए, खुदा न खास्ता वो किसी तरह से क्लास में ठीक नहीं है, ये कुछ ऐसे अवामन पैदा करते हैं कि उनको बिल्कुल स्कूल ही से निकाल दिया जाए।
0: जी बिल्कुल,
1: स्कूल ही से निकाल दिया जाए कि बजाय अगर उनकी वहाँ स्कूल ही में तरबियत की जाए और उनको बताया जाए कि यहाँ कैसे रहा जाए, और खुद वालदैन भी इन चीज़ों पर निगाह रखें, ये बहुत ज़रूरी है। वालदैन का निगाह रखना कि वो बच्चा स्कूल में क्या करता है, उसके स्कूल की सूरत हाल क्या है, ये जानना और इस पर इसकी इसलाह करना बहुत ज़रूरी है।
0: जी,
1: लेकिन ये कह देना कि ये बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ये तो वो दौर, उस दौर की बात हो रही है जब अभी डेनमार्क में तालीम का ये सिलसिला नहीं रहा था। आपको याद होगा कि यहाँ भी बच्चों को स्कूलों के अंदर एक मखसूस कमरा हुआ करता था, किसी ज़माने में वहाँ बंद कर दिया जाता था चंद घंटों के लिए,
0: और कई दफ़ा कॉर्नर में खड़ा कर दिया जाता था वो।
1: तो ये चीज़ जो है, ये छोटी छोटी बातें बज़ाहिर गैर मामूली दिखाई देती हैं, लेकिन ये अपने अंदर एक ऐसा इज्तमाई तासर रखती हैं कि ये गैर मुल्की जो हैं यही, और इनके बच्चे जो हैं यही मिसाइल की जान है।
0: अच्छा, ये चीज़ जो है रजा साहब के साथ भी हुई है, वो भी नौजवान है, यहीं पैदा हुए, वो कुछ कहना चाहते हैं?
2: जी, बहुत शुक्रिया बाशी साहब और नसर साहब। ये बच्चों को स्कूल में जो उनकी ध्यान नहीं लगता या नहीं पढ़ाई करते, उसमें बेसिकली मेरे ख्याल में जो एक मेन है, एक तो बच्चे होते ही शरारती हैं ख़ासतौर पर लड़के, लेकिन जो उस्ताद हैं उन्होंने अपना एहतराम जो होता है, जिस तरह हमें सिखाया जाता है कि आपका जो उस्ताद है उसका एहतराम, उसका रुतबा उतना ही है जितना आपके माँ बाप का है, अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो आपने उनकी बात माननी है, तो वो चीज़ ये समझाने में जो है वो कासर है कि उस्ताद का रुतबा क्या है। मैंने एक डेनिश आर्टिकल, मुझे याद नहीं कौन सी अखबार में पढ़ा था, कि एक यहाँ पे जो कोई इस्लामी स्कूल है यानी प्राइवेट स्कूल, उसने जो है वो अपने बच्चों को ये बताया कि उस्ताद का रुतबा क्या है, और वो बच्चे बनिस्बत डेनिश फॉल्क स्कूल के बच्चों के साथ जो है उनका जो मुवाजना करते हुए उन्होंने कहा कि ये जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उनका अपने उस्ताद के साथ और तालीम में और क्लास में जो बैठ के तवज्जो से बात सुननी है वो उसका कितना फ़र्क पड़ता है।
0: जी, वो एक सर्वे भी हुआ था यहाँ पे इसी बात पे। हाँ बिल्कुल।
2: तो ये है कि एक तो वालदैन की बच्चे नहीं सुनते क्योंकि स्कूल में बताया जाता है कि आपके बच्चों का कोई राइट नहीं है, माँ बाप का कोई राइट नहीं है, अगर कोई करते हैं तो आप जो है वो स्कूल में बताएं या इस नंबर पर फ़ोन करें। तो यानी ना माँ बाप के कोई राइट्स हैं ना उस्ताद के कोई राइट है, और फिर कहते हैं कि जी बच्चे जो हैं उनकी परवरिश गलत हो रही है।
0: अच्छा, आप ये बताइए कि आपके तीन बच्चे हैं
2: जी
0: छोटी उम्र के, उनके साथ आप कैसा रिलेशनशिप है?
2: यानी बच्चा रिलेशनशिप तो वही है कि जिस तरह एक तो आप माँ बाप की तरह उनके साथ सख्ती भी करते हैं, लेकिन आप उनकी بات مانتے بھی ہیں, چھٹیوں بھی لے کے جاتے ہیں, ان کی جو جائز خواہشات ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں, لیکن بچے جو ہیں
0: جائز خواہشات کیا مطلب,
2: یعنی جس طرح کوئی اگر وہ کہیں چھٹیوں پہ خاص جگہ پہ جانے جاتے ہیں, یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کپڑے خاص لے لیے, یا یعنی جو ان کی جائز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ماں باپ یا ہر گھر کا ایک اپنا ایک ماحول ہے, وہ اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جائز اور ناجائز کیا, جو ہم شاید سمجھتے ہیں جائز ہیں وہ شاید دوسری فیملی سے.
0: اسکول میٹنگ میں بھی جاتے ہیں؟
2: بالکل باشی صاحب, وہ تو سب سے اہم ہے کہ آپ کو وہاں پہ جا کے پتا چلتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ کس لیول پہ ہے, لیکن اس کے دوران بھی پتہ چلتا رہتا ہے, کیونکہ جب آپ بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں یا اساتذہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آج اسکول کا کام نہیں کیا, یا آج یہ غلطی ہو گئی, یا آج ٹھیک ہوا ہے, آج اس نے یہ اچھا کام کیا, تو یعنی وہ آپ کو فیڈ بیک جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ ساتھ ساتھ ملتا رہتا ہے.
0: تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب بچے گھر آتے ہیں اسکول سے تو پیرنٹس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ پوچھنا چاہیے اسکول میں کیا ہوا, تم نے کیا پڑھا, ایسی بات ایسا ہونا؟
2: بچے صاحب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تقریباً آدھا گھنٹہ جو ہے وہ لازمی آپ اسکول کا کام کریں ان کے ساتھ, ان کو 20 منٹ کہتے ہیں اسکول میں جو چھوٹے بچے ہیں خاص طور پہ, کہ ان کو پڑھنا چاہیے, یعنی ریڈنگ جو ہوتی ہے.
0: تو یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے, جو آپ والی نسل ہے, یہ کر رہی ہے؟
2: بھائی صاحب ہم تو کر رہے ہیں, بلکہ اب تو ہمارے بچوں کے بھی بچے ہو رہے ہیں, تو ہم نوجوان تو اس طرح اب نہیں رہے, لیکن یہ ہے کہ جو یہاں کا ایک ماحول ہے, جو سسٹم ہے, وہ خود بہت کنفیوز ہے کہ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ, یعنی ماں باپ کے بھی رائٹس لے لیے, اساتذہ کے بھی رائٹس لے لیے, اور بچوں کو بھی ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اور ان سے بھی یہ متوقع کرتے ہیں کہ یہ بھی کچھ جو ہے وہ بنیں گے اور کچھ کریں گے.
0: نصر بھائی آپ کی قیمتی رائے کیا ہے, ابھی رضا نے جو کہا ہے کہ ایک طرف تو آپ بچوں کو اسکول میں کہتے ہیں کہ تمہارے حقوق ہیں اور تم اپنے والدین کی اگر کوئی ایسی تو آ کے بتاؤ, اور ساتھ میں پھر شکایت یہ بھی کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ پڑھ نہیں رہے اور وہ ان کا دھیان کہیں اور لگا, تو یہ جو ڈپلیکیٹ تھنکنگ ہے اس کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟
1: میں سمجھتا ہوں کہ رضا نے جو بات کی ہے اس کے بعد کچھ کہنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. دو تین چیزیں جس کا آپ نے بھی اشارہ کیا ہے وہ بہت اہم ہے, کہ بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا جائے, بچوں کے ساتھ کم از کم شام کے کھانے پر جب آپ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں تو ان کے متعلق بات کریں, ان سے پوچھیں اسکول آپ کا کیسا, آپ کا دن کیسا گزرا, اور جو خاص توجہ جس کی طرف رضا نے بڑی زور دیتے ہوئے شاید توجہ دلوائی ہے وہ یہ ہے کہ جو اسکول کی میٹنگز ہوتی ہیں جن میں والدین کو طلب کیا جاتا ہے کہ وہ بھی حصہ لیں, ان میں لازمی شامل ہوں.
0: جی
1: کیونکہ اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ پہلی نسل کے جو ہمارے بہن بھائی تھے والدین جو تھے وہ شاید ان میٹنگوں میں اس لیے نہیں جاتے تھے کہ زبان نہیں آتی ہے, لیکن ہمارے نوجوان جو ہیں ان کو تو اب زبان کا کوئی مسئلہ نہیں رہا,
0: بلکہ
1: ہمارے کئی غیر ملکی اور خاص طور پر 4-5 پاکستانی نوجوان تو ایسے نکلے ہیں کہ انہوں نے ڈینش زبان پر مہارت اور ڈینش زبان سے آشنائی کے حوالے سے پورے ملک میں
0: دینشوں
1: کو مات کر دیا.
0: بالکل درست کہا. اچھا نصر بھائی آپ کا ہم نے بہت وقت لیا, ایک دو چھوٹی چھوٹی اور خبریں, اس کے بعد ہم آپ سے اجازت مانگیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ابھی نئی حکومت جو ہے اس میں کچھ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور ابھی جو یہ 4 پارٹی ہیں جو حکومت میں شامل ہیں اس میں سے 3 پارٹیوں نے یہ کہا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بچے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں نوجوان بچے ان کو ڈینش شہریت لینے کے لیے جو ہے قوانین میں نرمی کر دی جائے تاکہ ان کو جلدی سے یا آسانی سے سٹیزن شپ مل جائے. اس کے بارے میں تو ایک یہ تو اچھی بات کہی ہوگی,
1: اگر اچھی اور ایک خوش آئند بات ہے, اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 پارٹیاں مل کر یہ تجویز پیش کر رہی ہیں یا یہ مطالبہ پیش کر رہی ہیں.
0: بالکل,
1: اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ ہر وقت جو تلوار سر پہ چڑھی کھڑی رہتی ہے یہ ختم ہو جائے گی, اور ان بچوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے گا کہ انہیں معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے برابری کے مواقع بھی مل رہے ہیں, اور یہ جو شریعت کا قانون جو سخت سے سخت تر کیا جا رہا ہے آپ تو جانتے ہیں بڑی اچھی طرح سے کہ غیر ملکیوں کے لیے, اور ابھی آپ کو یاد ہے کہ الیکشن سے پہلے جن لوگوں نے शरीयत के लिए दरख्वास्तें दे रखी थी
0: जी।
1: और उन पर जो जानकारी का अमल था वो भी मुकम्मल हो चुका था, सिर्फ पार्लियामेंट में उस बिल को जेर बहस बाया जाना मकसूद था, उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसको मुअत्तल कर दिया गया था। और खदशा ये पैदा हो गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन लोगों की ये दरख्वास्तें मंजूर होकर सिर्फ पार्लियामेंट में पेश होने का इंतजार कर रही है उनको दोबारा उसी प्रोसेस से गुजरना पड़े। और अगर ये हो गया तो ये उन लोगों के साथ बहुत बड़ा जुर्म होगा, क्योंकि वो पहले ही से तमाम शरायत पूरी कर चुके हुए हैं इस हद तक कि उनकी दरख्वास्तें जो हैं वो पार्लियामेंट में मंजूरी की मुंतजर है।
0: लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी नसीब भाई ये कह रही है कि ये शर्तें तो पूरी कर लेते हैं लेकिन इनका जो माइंड है, जो इनका दिल है, वो जमहूरी नहीं है। तो ये हमें पता, वो ये कहते हैं कि हमें अब शरीयत देने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि इनका जो दिल है वो जमहूरी है, ये जमहूरी वैल्यूज़ पे जो है वो उसको कबूल करते हैं। तो कैसे ये कोई मीटर है कि आप लगा के पता कर लेंगे कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं आपके दिल में?
1: देखिए ये मफरूजे जो हैं ये तो शुरू ही से हमारे साथ चले आ रहे हैं बदकिस्मती से
0: जी, जी,
1: लेकिन
0: जी।
1: मैं यहाँ ये कहना जरूरी समझता हूँ और बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूँगा कि बस अनासर ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अब उन्हें डेनिश पासपोर्ट मिल गया है और वो माजरत से ज़रा आज़ाद हैं।
0: नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जिनको पासपोर्ट नहीं मिला, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ।
1: जी हाँ, जिनको पासपोर्ट नहीं मिला है और जिनकी दरख्वास्तें जो है अभी समाज के लिए सस्पेंड की गई हैं
0: जी,
1: उनके मामला को फौरी तौर पर अंजाम देना चाहिए। और ये बिल जो है ये अब हुकूमत को चाहिए, खासतौर पर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को, कि उन्हीं ने ये बिल जो है ये रोका हुआ था, मुअत्तल किया हुआ था, आप उसको जल्दी से पार्लियामेंट में पेश करके उन लोगों को शरीयत सुनवा दिया जाए।
0: वेरी नाइस नसीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और
1: बहुत दिया। और मैं ये अर्ज करूंगा आपसे कि बहुत कम लोग हैं जो शायद यहाँ डेनमार्क में ये यूरोपियन टाइम अखबार पढ़ते हों ऑनलाइन, मैं इन्हें कहूँगा कि वो आपका मजमून जो है वो ज़रा ज़्यादा पढ़े, उससे उनको वो हथियार हासिल हो जाता है जो इस मुआशरे में मुकालमे के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: आपकी ज़रा नवाजी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी हौसला अफजाई करते रहते हैं और इसी हौसला अफजाई की वजह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज इसमें।
1: आपका भी शुक्रिया और मेरी तरफ से आपके सामईन और नाज़रीन को ये मौसम गर्मा मुबारक हो
0: जी,
1: और अल्लाह हम सबको अपनी तना में रखे।
0: आज हमने डेढ़ घंटे की मीटिंग में दो बोतलें पानी की पी ली है, इतनी जो गर्मी हो रही है यहाँ पर। रजा भाई, ये था आज का हमारा प्रोग्राम बातचीत के संग, और हमें उम्मीद है कि हमारे सामने नाज़रीन को जो मालूमात हैं हमने पहुंचाई हैं, जिन ख़बरों पे नसर भाई की जो हमने कीमती राय ली है, उससे उनको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। तो सामने नाज़रीन, अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
3: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984, ईमेल radio@hamwatan.org।

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 27 जून पाकिस्तान में हफ्ते की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 210। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले इतराफ़े जुर्म। जी हाँ, मुन्ने मुनीब ने आज एक ऐसा इतराफ़े जुर्म किया जिसके बाद उन्होंने बड़े हाजी साहब मतलब के जनरल बाजवा, उनके बाद आने वाले हाजी साहब मतलब के जनरल आसिम मुनीर और छोटे हाजी साहब मतलब के डीजी आईएसपीआर, उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। मुन्ने मुनीब ने टेलीविजन के ऊपर यह एतराफ किया कि इमरान खान की हुकूमत बनने के चंद महीनों के बाद ही हमें यह बताया गया कि इन पर पड़ जाओ। जी हां, उन्होंने कहा कि हमें खुला छोड़ दिया गया कि इमरान खान की हुकूमत पर पड़ जाओ और हम पड़ गए। मुन्ने मुनीब के अल्फाज थे कि मैं जाती तौर पर आपको बताता हूं, इमरान खान की हुकूमत के पहले ही साल अहम मनसब पर बैठे लोगों ने कहा था कि यह बहुत नालायक है, इन पर खुलकर तनकीद करें, क्योंकि डोंट लेट द डर्ट कम टू अस, ये अल्फाज थे। उसने अल्फाज भी कोट करके बताए कि ये मट्टी ये गंद हम पर नहीं आना चाहिए, इसलिए इन पर पड़ जाओ। आज मुन्ने मुनीब फारूक ने तमाम जितने भी एमएफ थे उनको भी बरहना कर दिया, उसके साथ साथ जितनी सरकारी हजने थी उनको भी एक्सपोज कर दिया और जितने लौंडे लपाड़े थे उन सबको भी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, याद कीजिए, हर इतवार वाले दिन माइक्रोफोन लेकर आसमा शराजी इतवार बाजार पहुंच जाती थी और महंगाई का मस्नूई बयानिया बनाती थी। अब महंगाई का मस्नूई बयानिया क्यों कह रहा हूं, क्या महंगाई हमारे जमाने में नहीं हुई थी? हुई थी। महंगाई तो तकरीबन हर जमाने में होती है, मतलब अमेरिका हो या कोई भी दुनिया का मुल्क हो, महंगाई तो हर जगह हर वक्त होती है, लेकिन देखना यह होता है कि महंगाई जो है वो किसी आम दिनों के मुकाबले में या आम सालों के मुकाबले में, आम दौर के मुकाबले में क्या बहुत ज्यादा हुई है या कम हुई है, या उसमें कोई वजह शामिल है। जैसे कोविड में पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई हुई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, लेकिन इमरान खान की हुकूमत आते ही ऐसी कोई महंगाई नहीं थी, बल्कि कम महंगाई थी कंपैरेटिवली जो नवाज शरीफ के पिछले दौर में या उससे पिछले दौर में थी। आज जो महंगाई है उसको तो छोड़ ही दें, उसको तो अल्लाह की सुपुर्द कर दें, मैं वैसे अमूमी तौर पर बता रहा हूं। आपको याद करना पड़ेगा कि लौंडा लपाड़ा जी एक एक डॉलर के ऊपर बिल्कुल ऐसे जैसे छोटे बच्चे रोने लगते हैं एड़ियां जमीन पर रगड़कर, हर रोज वो पेट्रोल की कीमतों के ऊपर, पेट्रोल की कीमतें तो 15 दिन बाद बढ़ती और कम होती थी, उनका ट्वीट तकरीबन हर रोज आता था, और एक रुपया पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती थी तो वो कहते थे कि बस तूफान आ गया। आज 300 रुपए लीटर पाकिस्तानी पेट्रोल खरीद रहे हैं और आज इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत जो है वो उस वक्त से आधी है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इस वक्त कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में वो उससे आधी है जिस कीमत के ऊपर इमरान खान ले रहे थे, और पाकिस्तान में कीमत दुगनी है जिस पर इमरान खान दे रहे थे। ये जरा गौर कीजिए, उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में $125 फी बैरल तक या $123 फी बैरल तक तेल की कीमत थी और पाकिस्तान में 150 रुपए लीटर थी, और आज पाकिस्तान में 300 रुपए लीटर है और इंटरनेशनल मार्केट में $70, और अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे ये $70 से भी नीचे आ जाएगी। लेकिन लौंडा लपाड़ा जी हमें रोज बताते थे। आज मुन्ने मुनीब ने वो इकबाले और इतराफे जुर्म किया है जिसके बाद उन्होंने किसी सहाफी के पल्ले, जो उन वाले सहाफियों की बात मैं कर रहा हूं जो पड़ गए थे और ये सब कुछ कर रहे थे। अच्छा, आपको याद होगा कि इससे पहले ख्वाजा आसिफ इस चीज में पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को पहले ही उनके तमाम कारनामे अयां कर चुके थे जब उन्होंने इकबाले जुर्म किया था। वो क्या इकबाले जुर्म था? जब एक्सटेंशन पर उन्होंने वोट दिया था जनरल बाजवा को, तो वो इकबाले जुर्म क्या था ये जरा सुनिएगा। पहले लौंडा लपाड़ा जी के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। आपने गौर करना है कि लौंडा लपाड़ा जी भी ये नहीं सवाल पूछ रहे कि आप उनके साथ मिल चुके थे, आपकी उनके साथ डील हो गई थी, ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर रहे। वो इस इंटरव्यू के अंदर अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि सॉफ्टनेस आ गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई मसाज वगैरह कर रहे हैं जिससे सॉफ्टनेस की बात कर रहे हैं लौंडा लपाड़ा जी। वैसे करते तो मसाज ही हैं, उनका मसाज पार्लर ही है, उनकी सहाफत की दुकान नहीं है बल्कि लौंडा लपाड़ा जी का मसाज पार्लर ही है। पुराने ज़माने में मालशिये जो थे वो बोतलें जो थे तेल की वो लेकर जो भाटी गेट और उन इलाकों के अंदर छनकाते फिरते थे कि हमसे मालिश करवा लो। अब ये जरा नया जमाना आ गया है, इसके अंदर स्टूडियो के अंदर बैठकर आप पेश करते हैं कि हमसे मालिश करवा लो। तो बहरहाल है तो मसाज पार्लर ही, लेकिन उनकी और ख्वाजा आसिफ की क्या बात हुई ये पहले जरा सुनिए।
2: आपकी आपकी स्टेटमेंट, आपने कहा कि जी हमें 2-3 दफा ये कहा गया कि आयो, हम अब तंग आ चुके हैं इससे, ठीक है? तो इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा था
3: अप्रैल 2019
2: में, यानी कि साल भी अभी नहीं हुआ।
3: और उसके बाद दूसरी दफा जो है मार्च 2021।
2: तो आप लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा था, ठीक है?
3: सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रही थी, सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप। मैं इसको थोड़ा सा रीडिफाइन कर दूंगा। आपने जो बात की है उसने जो है एट ए वेरी अर्ली स्टेज जो है इनको डिसअपॉइंट कर दिया था। और उसमें मेन वजह जिस तरह उन्होंने कहा था कि आप पहले पंजाब ले लें जून में, क्योंकि अप्रैल में ये बात हुई थी, और दिसंबर में आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें। तो द मोन मोस्ट
2: कौन सा 19 ठीक।
3: और उसमें जो है वो देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेयर विद द देन पंजाब गवर्नमेंट जो था वो मोटिवेट कर रहा था।
2: अप्रोच आपने किया था, उन्होंने किया था?
3: जी उन्होंने किया था।
2: अच्छा।
3: और ये वो दिन है जब हमने एक्सटेंशन का उनको वोट दिया था।
1: सुन लिया आपने, ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि महज इमरान खान की हुकूमत आने के 8-9 महीने के अंदर ही उन्हें ये ऑफर दे दी गई थी। इसका मतलब यह है कि मुन्ना मुनीब जो कह रहा है कि हमें पहले साल के अंदर अंदर ही, मतलब इससे भी पहले मुन्ने मुनीब को यह कह दिया गया था कि पै जाओ। अच्छा, फिर आखिर पर आपको यह भी बताएंगे, कोशिश करेंगे कि यह भी आपको जवाब देने की कोशिश करें कि फिर इमरान खान को बर्दाश्त क्यों किया गया। मतलब उनको जब वो हुकूमत में आ रहे थे तो उनको रोका क्यों नहीं गया हुकूमत में आने से, ये जर्नल्स ने क्यों किया, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले जरा इस मामले को सॉल्व कर लें। तो अब आप याद कीजिए कि एक तरफ ख्वाजा आसिफ, जिनका ये इंटरव्यू मैंने आपको सुनवाया, वो कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में ही हमें जनरल बाजवा ने ये कह दिया था, अप्रैल 2019 की बात हो रही है, कि आपको पहले पंजाब की हुकूमत देते हैं फिर आपको मरकजी हुकूमत दे देंगे, आप ले लें। और ये अप्रैल में ऑफर कर दी गई, तो इस पर काम कब से शुरू हो गया होगा ये खुद ही सोच लीजिए। मुन्ना मुनीब भी आज कंफर्म कर रहा है कि हमें कहा गया था कि ये बड़े नालायक हैं, इनको पढ़ जाओ, हम पर बदनामी नहीं आनी चाहिए, मतलब इन्हें बदनाम कर दो। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं, पाकिस्तानी मिलिट्री जर्नल्स की जो टेक्स्ट बुक है उसमें किसी भी सियासतदान को पहले नालायक साबित किया जाता है, उसके बाद उसे कंप्रोमाइज साबित किया जाता है, पहले नालायक और नकम्मा, फिर वो कंप्रोमाइज्ड होता है, फिर वो करप्ट होता है, ये भी साबित किया जाता है, फिर उसके बाद वो बैरूनी एजेंसियों का कोई ना कोई आलाकार, रॉ का, ये फातिमा जना को भी ना छोड़ा गया, किसी को ना छोड़ा गया, वो रॉ का CIA का एजेंट होता है, फिर उसके बाद उसके जो मजहबी मामलात होते हैं वो खराब होते हैं, उसके ऊपर अटैक किया जाता है, फिर उसके जो जिंसी मामलात हैं उन पर अटैक किया जाता है, उसके अफेयर्स, उसके रिलेशनशिप्स, उसकी शादी इमरान खान के साथ, तो तमाम हदूद क्रॉस कर दी जर्नल्स ने, इद्दत और निकाह के घटिया केसेस बनाकर आपको बताया कि ये अंदर से किस कदर गंदे हैं और गलीज हैं। उसके बाद आखिर पर उसके मजहबी मामलात के ऊपर भी अटैक किया जाता है कि उसका इस्लाम के बारे में मामला भी ठीक नहीं है। उसकी आखिरी हदूद एक तो इद्दत और निकाह का केस आपने देखा, और दूसरा भुट्टो साहब को फांसी देने के बाद कैमरा लेकर गए कि उनकी वीडियो बनाएं कि उनके खतने हुए हुए हैं या नहीं, ताकि अगर उनके खतने ना हुए होते अकॉर्डिंग टू देयर इमेजिनेशन, पता नहीं वहां पर इतना फोकस इनका क्यों है। वो कहते हैं कि उनकी वीडियो इसलिए बनानी थी कि साबित किया जा सके कि उनके खतने नहीं हुए हुए थे। तो इसका मतलब उस वक्त के हाजी जियाउल हक साहब जो हैं वो ये चाहते थे कि ये साबित कर दें कि जुल्फकार अली भुट्टो तो अच्छे मुसलमान थे ही नहीं, शराब पीने के उन पर इल्जाम तो पहले ही लगा दिए गए थे, या वो पीते भी थे अगर, तो ये बताने के लिए कि वो तो कोई बड़े अच्छे मजहबी आदमी नहीं है, इसलिए उनका हुक्मरानी के साथ तो दूर दूर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, हम सारे हाजी साहब हैं, हमने कभी शराब नहीं पी, हमने कोई बुरा काम नहीं किया, इसलिए हुकूमत हमारे पास ही होनी चाहिए। बार वापस आते हैं, اب یہ جو منیب فاروق صاحب نے اقبال جرم کیا اور اس سے پہلے جو خواجہ آصف نے اقبال جرم کیا، اقبال جرم تھا یا سازش میں شمولیت تھی خواجہ آصف کی، جو انہوں نے کہا کہ اپریل کے مہینے میں ہی ہمیں بلا کر یہ سب کچھ کہہ دیا گیا تھا۔ اس سے مجھے دو واقعات یاد آ رہے ہیں۔ ایک واقعہ تو ہماری حکومت تقریباً درمیان میں پہنچی تھی، میں اپنی ڈائری میں دیکھوں گا کہ ایگزیکٹلی وہ کون سا دن تھا، لیکن تقریباً درمیان میں پہنچی تھی کہ ایک شام کو پرائم منسٹر ہاؤس میں، تب کووڈ آ چکا تھا، پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک میٹنگ بلائی گئی۔ اس میٹنگ کے اندر کوئی شام کے 7-7:30 بجے کی میٹنگ تھی۔ عمومی طور پر اتنی لیٹ ایسی میٹنگ نہیں ہوتی تھی جس کا کسی کو پتا نہ ہو کہ وہ کس چیز کی میٹنگ ہے۔ مجھے بھی میرے آفس میں بتایا گیا کہ میٹنگ ہے، فوراً پہنچیے، تو پہلے سے وہ پلانڈ یا اسکیجول میٹنگ نہیں تھی۔ جب میں اس میٹنگ میں پہنچا تو اس میٹنگ کے اندر پہلے سے 5-6 لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے، یا 8 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اسے عمران خان صاحب کی کچن کیبنٹ کہہ لیجئے، جو موسٹ سینئر لوگ تھے وہ اس کمرے میں براجمان تھے۔ شاہ محمود قریشی صاحب تھے، پرویز خٹک تھے، اسد عمر تھے، شیریں مزاری تھیں، مراد سعید تھے، اس کے ساتھ ساتھ اور میں کچھ اکابرین کے ایک دو کے نام بھول رہا ہوں گا، فواد چودھری تھے، بہت ہی چیدہ چیدہ کوئی 8-10 لوگ جو تھے وہ تھے۔ میں اس سے پہلے کوئی اور کام کر رہا تھا، پیغام تو میرے لیے بھی پہلے کا آیا تھا، لیکن اس کام کو ختم کر کے جب میں کمرے کے اندر پہنچا تو یہ دوست وہاں پہنچ چکے تھے۔ میں جیسے ہی انٹر ہوا تو پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ اس کو پتا ہوگا کس چیز کے لیے میٹنگ ہے۔ تو شاہ صاحب نے مجھے پوچھا کہ کس چیز کی میٹنگ آپ لوگوں نے بلوائی ہے اس وقت، تو میں نے کہا کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے، مجھے بھی ابھی یہ بتایا گیا تھوڑی دیر پہلے کہ میٹنگ ہونی ہے، تو میں کچھ کر رہا تھا اس لیے تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں، تو میں پہنچا ہوں۔ تو اس پر پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ یہ بتا نہیں رہا، یہ کھچرا ہے، یہ بتا نہیں رہا، یہ چاہتا ہے کہ وزیراعظم آ کر خود ہی بتائیں، پتا اسے سارا ہے کہ یہ میٹنگ کس چیز کی ہے۔ اچھا، اس دن وہ کوئی اتفاق کی بات ہے، عمومی طور پر مجھے پتا ہوتا تھا، لیکن اس دن مجھے اس میٹنگ کا نہیں پتا تھا کہ یہ اچانک سے کیوں بلائی گئی۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد میں بھی بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، پرائم منسٹر صاحب آئے۔ پرائم منسٹر صاحب کے پیچھے ایک طرف جنرل باجوا چل رہے تھے اور دوسری طرف جنرل فیض، جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے، وہ چل رہے تھے۔ دونوں آ گئے، بیٹھ گئے۔ اب جنرل باجوا جو ہیں وہ ایک کرسی ان کے لیے خالی لگا دی گئی، عمران خان صاحب بیٹھے تھے اس کے بعد جنرل باجوا، حاضرین کے ساتھ، ان کے برابر پہ نہیں بلکہ حاضرین کے ساتھ جنرل باجوا بیٹھ گئے، اور اس کے آگے پھر پرویز خٹک، اور دوسری طرف پہلی کرسی کے اوپر شاہ محمود قریشی، اور اسی طرح جنرل فیض بیٹھ گئے، اور پھر یہ میٹنگ شروع ہو گئی۔ اب کسی کو نہیں پتا تھا یہ میٹنگ کس چیز کی ہے۔ تو عمران خان صاحب بہت ہی بے باک طریقے سے بات کرتے تھے، اردلی تو تھے نہیں وہ، وہ جنرل صاحب وغیرہ، جناب اقبال بلند کرنے والی باتیں تو تھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ میٹنگ کیوں بلائی ہے، آپ سب روز آ کر مجھے کہتے ہیں کہ فوجی جنرلز ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں اور ہماری حکومت گرانا چاہتے ہیں، اور آپ سب یہ بھی کہتے ہیں کہ باہر یہ بات عام کر دی گئی ہے کہ ہمیں ملٹری جنرلز لے کر آئے ہیں، اور یہ بات میں نے پہلے کبھی پوری تفصیل میں نہیں بتائی، آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے ہلکی پھلکی بتائی یہ میں نے واقعہ، لیکن آج پوری تفصیل سے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سب یہ بھی آ کے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ باہر میڈیا میں ہمارے خلاف یہ محاذ بنایا جا رہا ہے کہ ہماری حکومت ملٹری جنرلز لے کر آئے اور اب وہ حکومت گرا رہے ہیں، تو کیونکہ آپ بھی سوال کرتے ہیں، مجھے بہت سارے جرنلسٹ بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں اور میں کوئی بھی جواب دیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں آپ کے چہروں پر کہ آپ مطمئن نہیں ہوتے اس طرح سے، کیونکہ باہر جو فضا بنا دی گئی ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ڈائریکٹلی بیٹھ کے کھل کے ایک دوسرے کے ساتھ بات ہو جائے۔ اچھا، اس سے پتا یہ چلتا تھا کہ جنرل باجوا صاحب کو بھی پہلے نہیں پتا تھا کہ یہ میٹنگ ہونی ہے، انہیں بھی پرائم منسٹر نے ویسے ہی ملنے کے لیے بلایا تھا اور لا کر پھر وہاں بٹھا دیا تھا، کیونکہ جنرل باجوا صاحب کے چہرے کے تاثرات بھی فوراً سے بدل گئے جیسے ہی پرائم منسٹر نے یہ بات کہی۔ اور پرائم منسٹر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو جو سوالات آپ لوگوں کے اندر ہیں وہ کھل کے پوچھیں۔ ایک لفظ یہ تھا کہ کوئی پردے داری نہیں ہے اس میٹنگ کے اندر، کھل کے بات کریں، میں کسی کو کسی سوال اور کسی جواب پر جج نہیں کروں گا۔ جونیئر سے سینئر ترین، سب سے جونیئر تو میں ہی بیٹھا ہوا تھا، میں یہی کہہ سکتا ہوں تجربے کے لحاظ سے، جس طرح سے بھی آپ نے کہنا، تو جونیئر سے سینئر ترین شخص کو کوئی قدغن نہیں ہے کہ اس نے کیا سوال کرنا ہے، खुल के सवाल कीजिए जिसने भी सवाल करना है, और ये जो सवालात आप रोज मेरे से करते हैं कि साजिशें हो रही हैं, ये यहां खुल के बात करें। सवालात शुरू हो गए, किसी ने कोई सवाल किया तो किसी ने कोई। पहला एक सीधा सवाल, उसका जवाब बता देते हैं कि जी बाहर माहौल बना दिया गया है कि हमें जनरल्स लाए हैं, हम इलेक्शन जीत कर नहीं आए। उस पर जनरल बाजवा बोले, और ये मैं बिल्कुल, आपको पता है कि मैं कसमें नहीं खाता इसलिए मैं कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन अपने पूरे ऑनर के साथ बता रहा हूं, ये तमाम लोग जिंदा है, अल्लाह इन सबको जिंदगियां भी दे, ये तमाम लोग आपको बता सकते हैं जो उस मीटिंग में मौजूद थे। मैंने नाम भी ले दिए, एक दो नाम भूल गया होगा, बाकी मैंने नाम ले दिए। जनरल बाजवा ने शुरू यहां से किया, ला इला इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कसम खाई उन्होंने कलमा पढ़ के, और कहा कि ये बकवास करते हैं, हम किसी को ऐसी बात नहीं कहते। और फिर अगली उन्होंने कसम खा के कहा कि आप लोग इलेक्शन जीत के आए हैं, हमने आपके इलेक्शन के अंदर कोई ऐसे आपको वोट नहीं पड़वा दिए कि आपको इलेक्शन हमने जितवाया है। ये कसम खाकर उन्होंने उस मीटिंग में बयान दिया। उन्होंने पहले कलमे की कसम पड़ी, उसके बाद दूसरी कसमें खा के ये कहा कि आप अपने वोटों से जीत के आए हैं, हमने इसमें कुछ नहीं किया। हालांकि किया तो था, हमारी 15-20 सीटें चोरी की थी उन्होंने, कम की थी। उन्होंने पहले ये कसम खाई, उसके बाद ये बात भी हुई कि मीडिया के अंदर ही, उस पर भी उन्होंने कसम खाकर ये कहा, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं कि फिर अल्लाह की कसम खाकर उन्होंने कहा, कसमें बहुत खाते थे बाजवा साहब, अल्लाह की कसम खाकर उन्होंने ये कहा कि हमने ये बात कभी किसी को नहीं कही, हम ये महाज आपके बारे में नहीं बना रहे। अच्छा, उस वक्त तक मुल्क के चोटी के कई बिजनेसमैन भी इमरान खान को आकर ये बता चुके थे कि फौजी जर्नल्स आपके खिलाफ काम कर रहे हैं, और हमें लग रहा है जो मीडिया के जर्नलिस्ट आपके बहुत करीब हैं, वो जर्नलिस्ट जो हैं वो आपके खिलाफ शुरू हो गए हैं, तो ये उधर से ही जरूर मामला सारा किया जा रहा है। खैर, इमरान खान साहब खामोश रहे, हम लोग सवालात करते रहे, जनरल बाजवा साहब तकरीबन हर बात का कसम खा के जवाब देते रहे, तकरीबन डिफेंसिव थे, नजर आ रहा था चेहरे पर पशेमानी, नजर आ रहा था चेहरे के ऊपर अपना जो इकबाले जुर्म होता है, लेकिन मान नहीं रहे थे। और कसमें और कुराने, कसम और कुरान उठाकर अपनी बात को, ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सब लोग बैठे हुए थे, कोई एक जुटला दे इस मीटिंग की जो प्रोसीडिंग में आपको बता रहा हूं, उसमें खुल के बातें हुई कि आपने सहाफियों को ये कहा या नहीं कहा, उन्होंने कसम उठाकर कहा कि नहीं। लेकिन आज मुन्ना मुनीब ये साबित कर रहा है कि छोटा हाजी हो या बड़ा हो, ये कलमे की कसम भी झूठी उठाना मसला कोई नहीं है, कुरान की कसम भी झूठी उठाना कोई मसला नहीं है, और वहां पर ये सब कुछ किया गया। तो ये तो एक मीटिंग आपको बता दूं, दूसरी मीटिंग में और आपको बताता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा। मैं पंजाब के एक गांव में टाट स्कूल पर पढ़ा, वहां से निकल के बहुत मेहनत करके अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी, सिर्फ अमेरिका की यूनिवर्सिटी नहीं, अमेरिका की टॉप टॉप यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की 20 तगड़ी तरीन यूनिवर्सिटीज में यूनिवर्सिटी है, आप सबने उसका नाम इतना ज्यादा पाकिस्तान में इसलिए नहीं सुन रखा होता, थोड़ा सा जो लोग तो समझते हैं उनको समझ है, जिनको नहीं समझ उनको बता दूं कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया है, स्टैनफर्ड है, ये बहुत आला यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन ये अमीरों की यूनिवर्सिटीज हैं, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, और इनका साइज ऐसा ही है जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था उसका और इनका, कि जैसे आप कंपेयर करें माल्टे को और तरबूज को, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाता था वो साइज के अतबार से तरबूज था, और ये जितनी यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी अमरीकी यूनिवर्सिटीज के आपको नाम पता हैं, ये सारी माल्टे के साइज की या उससे भी छोटे साइज की, तरबूज से अगर आप कंपेयर करें तो। वजह क्या है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, शुरू से अशराफिया की यूनिवर्सिटीज हैं, ये सरकारी यूनिवर्सिटी थी, लेकिन ये उन्हीं के हमपल्ला यूनिवर्सिटियां जिनको समझा जाता है, ये 3-4 यूनिवर्सिटीज जो सरकारी हैं अमेरिका की, लेकिन उन्हीं यूनिवर्सिटीज के हमपल्ला समझी जाती हैं, उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, जिससे शायद जुल्फकार अली भुट्टो भी पढ़े थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन, और एक आध और यूनिवर्सिटी। ये जो 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं ये सरकारी हैं, बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं और हम पल्ला हैं। बताने की सारी बात यह है कि यह सारा सफर करके वहां तक पहुंचा, और उसके बाद जब इमरान खान साहब ने जिस काम पे लगाया तो मेरा अक्सर इमेज क्या बना, बड़ी बदतमीजी करता है, बहुत सख्त बोलता है, और इनको जरा बदजुबानी कम करनी चाहिए। शहबाज गिल साहब, वैसे तो आप मुझे बड़े पसंद हैं लेकिन आप जुबान बड़ी सख्त इस्तेमाल करते हैं। इसका जवाब मैं इमरान खान साहब से, जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई अमेरिका आने से पहले, दो तीन दिन पहले उनके घर पर, वो कुछ दो घंटे लंबी मेरी मीटिंग थी रात के वक्त उनके साथ। रमज़ान था तो रात के वक्त हम मिल रहे थे, कोई गालिबन रात 12 बजे, 12:30 बजे से लेके कोई 2 बजे तक रात के, या शायद उससे भी लेट तक मुझे। तो उस मीटिंग के अंदर बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे उस वक्त जितने भी बिकने वाले लोग थे उनका उन्हें मालूम हो चुका था। एक बात उनसे मैंने और की, वो बात ये थी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि, उन्हें जाहिर है पता था कि अब मैं मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, अभी का टाइम तो मुश्किल चल रहा है, गवर्नमेंट के वक्त को कैसे रिफ्लेक्ट करते हो, क्योंकि वो अपनी याददाश्तें उन्होंने मुझे कुछ बताई थी। तो मैंने उसके जवाब में उन्हें कहा कि मेरी अल्लाह से दुआ ये है कि हमारी हुकूमत कभी दोबारा वापस ना आए। ये मैंने उनके मुंह पर बैठे, हम दोनों बैठे हुए थे, मैंने कहा। तो उन्होंने बड़ा हैरान होकर मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, खान साहब इस वक्त कुछ 27 केस हैं जिन्हें मैं भुगत रहा हूं, बलूचिस्तान से लेके हर जगह पर, और जाना पड़ता है रोज। आप यकीन कीजिए कि मैं रोज, जो लाहौर में कचहरी को कवर करते हुए रिपोर्टर हैं वो आपको बताएंगे, मैं हर रोज अदालत में होता था क्योंकि 27 केसेस थे। कोई ना किसी की जमानत लगी हुई है, किसी की अबूरी जमानत लगी हुई है, किसी का कुछ लगा हुआ है। तो मैंने कहा कि जी मैं सुबह उठता हूं, 8 बजे अदालत पहुंचता हूं, 8 से लेकर 12, 1 बजे, 2 बजे तक अदालतों में रहता हूं, उसके बाद मैं फारिग हो जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, कुछ एक्सरसाइज करता हूं, कुछ चंद दोस्तों से मिलता हूं, जिंदगी बहुत सुकून में है। तो उन्होंने गौर से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, खान साहब खुदा गवाह है, अगर मैं आपकी हुकूमत में आपके साथ काम करने का वक्त और आज के वक्त का कंपैरिजन करूं तो जिंदगी सुकून में है, ना किसी के साथ चक चक बक बक करनी पड़ती है, ना किसी की सुननी पड़ती है। तो मेरी दुआ है कि वो वक्त तो कभी ना आए, ये उससे बेहतर है, ये जिस वक्त में से गुजर रहे हैं, भले केसेस हैं, भले बुरे हालात हैं। तो ये मैंने बात क्यों कही थी, इसलिए कही थी जो आज मुन्ना मुनीफ फारूक ने बताया। मैं क्योंकि स्पोक्स पर्सन की पोजीशन पर गया था। अब मेरा एक मसला है, मैं जिंदगी में जो करता हूं पूरे दिल से करता हूं, नहीं तो नहीं करता। जो काम करना है, जो कुछ करना है, पूरे दिल से करना है। अब जब मैं वहां उतरा, अब मुझे बताइए मेरा दिल करेगा अजमा बुखारी के साथ बैठ के प्रोग्राम करने को? वाई वुड आई डू दैट? कोई भी बंदा, कोई जियो शऊर इंसान बैठ के उनके साथ प्रोग्राम करेगा? राणा सनाउल्लाह साहब के लेवल पर कोई बंदा जाएगा जिन्होंने 1991-92 में मरियम साहबा, कैप्टन सफदर और मरियम साहबा की मरहुमा वालदा के बारे में वो बातें की जो आज भी कोई नहीं कर सकता? आप इस लेवल पर जब जाकर आपने लोगों से

तो बिल्कुल इसी तरीके से जो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल से, वो तो उस वक्त मजबूर भी थे, मुशर्रफ के बाद वीक भी हुए हुए थे, तो जरदारी साहब ने करप्शन बहुत कर ली थी, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि दोबारा से वो आए ना, जर्नल्स बर्दाश्त कर सकते थे, ना आवाम कर सकती थी, ना जरदारी साहब खुद कर सकते थे। नवाज शरीफ को लाए तो उनके साथ फड्डे बन गए। 11 में नवाज शरीफ को लाने से पहले ही इमरान खान के बड़े बड़े जलसे होना शुरू हो चुके थे और वो पॉपुलर हो चुके थे, वो वाहिद एक कौम के पास चॉइस रह गए थे, जीतना उन्होंने ही था। हाँ, जर्नल्स ने बीच में अपने बहुत सारे लोग शामिल कर दिए और ये हवा बना दी कि हम इन्हें ला रहे हैं। अब ये ला क्यों रहे थे? क्योंकि ख्वाजा आसिफ भी न्यूयॉर्क में जाके ये बताता था और जर्नल्स भी ये बताते थे कि इमरान खान इस्लामिस्ट है, सेडिस्ट है, उसको लाए तो आपकी तबाही कर देंगे, क्योंकि अमरीका वगैरह से इन्हें वो डील नहीं मिल रही थी जो चाहिए थी। दोबारा पॉलिश करने का मौका हम मांग रहे थे, हमें वो मिल नहीं रहा था अमरीका में। तो इसलिए कोई ऐसा बंदा अगर आ जाए थोड़ी देर के लिए जिससे उनको डर आ जाए और वो फिर हमारी, हमें अपनी ताबेदारी में ले लें, तो ये मामला भी अच्छा होगा। ऐसे ही साथ ही जरदारी और नवाज शरीफ भी आंखें निकालना शुरू हो गए थे, कोई ईंट से ईंट बजा रहा था तो कोई जो है वो, नवाज शरीफ साहब भी जाहिर है उन्होंने भी एक्सपेंशन करने की कोशिश की थी, डॉन लीक्स और सब कुछ आपको याद होगा, तो उनको भी डराने के लिए कि गब्बर आ जाएगा, आप लोगों ने हमारे साथ मिलके ना खेला तो गब्बर आ जाएगा, पूरी गंदी अशराफिया जो थी वो एक डराने के लिए थी। तो इमरान खान का रास्ता इसलिए नहीं रोका गया था कि इमरान खान से डराना मकसूद था, और आखिरी दिन आरटीएस बिठाकर उनकी 20-25 सीटें इसलिए छीनी गई कि उनकी हुकूमत गिरानी थी, जो ख्वाजा आसिफ ने भी बता दिया, इन टाउट्स ने भी बता दिया। आज इमरान खान की एक जाली झूठी तस्वीर भी वायरल की गई, उस पर भी बात करेंगे, कश्मीर के मामलात पर भी पीटीआई और पीएम जमात इस्लामी मिली है, सब बातों पे बात करनी थी, खबरें थी सारी, मौका नहीं मिल सका, लेकिन ये ज़रूरी था कि मैं तफसील से आपसे इस पर बात करता। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।